ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी दे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: चेहबर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917-7763

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

क्या बात है जी, क्या बात है दोस्तों। मैं माफी चाहूंगा, बाकी जेडे मेरे को मैसेजेस भी आ गए, कॉल्स है जिहड़ियां अज नहीं स्टूडियो दे विच कोई भी आ रही है, ना एयर ते जा रही है ने, ना ही जो मैं सॉफ्टवेयर खोलिया उत्थे तक कॉल पहुंच रही है, वॉइस मेल ते जेड़ा जा रहा है सीधा फोन ते। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ तुहाडे जेडे मेरे परसनल फोन ते जेडे मैसेजेस आ रहे ने, ते तुसी दो कॉल्स भी आईयां, ते बहुत बहुत धन्यवाद तुसी मैनूं अपडेट कर दिता, क्योंकि मैनूं दस्या गया सीगा वी फोन है जेड़ा अज वर्क नहीं करदा पिया। सो मैं क्या चलो कोशिश करके देखता, मैं सॉफ्टवेयर की मदद लैके देखता, कई बार टेक्नोलॉजी भी है जी उ फेल हो जाती है। सो चलो फिर अज का विषय जो फिर आप दोबारा जो इस विषय में छेड़ लवेंगे, क्योंकि अज किसी भी तरह थोड़ी मेरी गलबात तो हो नहीं सकती। हाँ जी, आफ्टर द प्रोग्राम तुम मेरे जी कॉल कर सकते हो, प्रोग्राम बाबत फीडबैक देनी है दोस्तों। थोड़ा फीडबैक है जी पॉजिटिव होवे, नैगेटिव मेरे सिर मथे, क्योंकि मैं इन्ह चार दीवारों के बैठा, तुम है जेडे मैं पता नहीं कितने कितने सुनते पे हो, थोड़ी जी फीडबैक है मेरे लिए है जी बड़ी लाहेवंद है, मैं पता चलता। मैं हमेशा यह कहना मैं ओपन हों हर एक क्रिटिक वास्ते भी, तो बाकी जो तुम सिफत सलाह करते हो उन्हों का मैं थोड़ा बड़ा शुक्र गुजार हाँ, पर प्रोग्राम के लगे भी इतने कुछ कमी हैगी है, ये होर सुधार किया जा सकता, डू कॉल मी आफ्टर द प्रोग्राम कर लिया करो, भावें एयर ते कर लिया करो, मेरा तो खुला ही है, जिदा तुसी कहोगे मैं तो उस तरह प्रोग्राम की रूपरेखा जी चेंज करता रहना, थोड़े थोड़े जिदा थोड़े सुझाव आते रहेंगे। एक मैनू पता उहदे ते मेरे तो हजे थोड़ा जिहा वर्क नहीं होया, भी जिहड़ी स्टार्टिंग दी इंट्रो है उहनूं घटाया जावे, उहनूं छोटा कीता जावे, सो मैं उहदे ते जरूर जिहड़ा काम करांगा। मैं उह समझदा हां, उह मेरी भी थोड़ा जिहा हैगा आ भी उहदे ते, क्योंकि उह मैनूं थोड़ा जिहा टाइम तां चाहीदा हुंदा, क्योंकि उस वक्त ना थोड़ियां हैडलाइनस है जिहड़ियां उह अपडेट हुंदियां ने, सो उह समां 5:02-3 ते कुछ क हैडलाइनस अपडेट हुंदियां ने, सो इस करके मैं उह थोड़ा जिहा समां अपने लई रख्या हुंदा, जे कोई तुहाडे तक कोई अपडेट आवे। अज दो खबरां मैं जिहड़ियां तुहाडे नाल सांझियां कीतियां 5:07 ते अपडेट होईयां ने, सो इस करके मैं थोड़ा जिहा समां रखदा, पर चोई ना कोई होर वे है जिहड़ा मैं रख लवांगा, स्टार्टिंग छोटी करके विचकार है जिहड़ा थोड़ा अपने आप नूं समां दे दिया करांगा, ते जे कोई हैडलाइन आउंदी है उदों शेयर कर दिया करांगा, इस तरह कर लांगे। बड़ा ही खूबसूरत गीत, हसदे ही रहिंदे आ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਤਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲਫ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਸਲ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜੁਖ ਸੁੱਖ ਜੱਸਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਨੈੱਟ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਜੱਸਲ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰ ਨੈੱਟ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਫ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਨੈੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜੱਸਲ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 519-835-6079 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਰੈਡੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਸੇਮ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਲ ਰੈਡੋ ਪਾਰਕ, ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਕਦੋਂ ਹੈ? ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲ ਰੈਡੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਐਤਵਾਰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੇਮ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅਲ ਰੈਡੋ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਸੋ ਹਰਮਨ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
हैप्पी बर्थडे टू इंद्रजीत पठल, गॉड ब्लैस हिम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल फैमिली, वेरी नाइस सॉन्ग। थैंक यू जी, थैंक यू भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उधर बिट्टू भाजी होना का भी मैसेज आया, कहते मेरी विशेष है जी रम्मी नू पास करियो। सुख जसल भाजी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरमीत जी कहते भाजी फोन नहीं चल रहा। हाँ जी बिल्कुल जी, फोन अज चल नहीं रहा, मैं माफ़ी चाहवागा। 62 88 तो आया जी, फोन नॉट वर्किंग। हाँ जी हाँ जी, फोन भाजी वो वर्क नहीं कर रहा, मैं माफ़ी चाहागा अज। सो इस करके जो विषय ये तो मैं थोड़ी कॉल्स नहीं लै सकिया, पर मैं पता है विषय के उत्ते बहुत सारिया साढ़े सारिया दादा ने जुड़िया होंदिया ने। आफ्टर प्रोग्राम तुम मेरे संपर्क कर लियो, रियल स्टेट बाबत कोई गल करना चाहते हो, या फिर तुम जो बच्चों की आर ई एस पी नहीं करवाई तो जरूर करवा लो। मैं थोड़े नाल अज एक रिपोर्ट साझी की है, बच्चों से कल तो स्ट्रैस देना, उन्हों की जिम्मेवारी साड़ी है। हाँ जी, सो इस करके जे आप पूरी तरह फाइनैशियल टूल्स का सही तरह इस्तेमाल करांगे तो फिर बच्चों भी सौख होगी, तो सानू भी सौख होगी, तो वह बच्चे है जिहड़े अपनी मनपसंद की पढ़ाई है जी पोस्ट सैकेंडरी एजुकेशन है जी कर सकनगे। सो दोस्तों प्रोग्राम के हिस्से में है जो स्पोंसर किया जा रहा प्रो वन ट्रक रिपेयर एंड टायरस। कोई एनुअल सेफ्टी एमिशन टैसट कराना चाहते हो, जिन्हें भी साढ़े स्पोंसर ने जो भी तुम इन्होंने को जाने हो, तो रेफरेंस के तौर पर है जरा सर्जरी सवेर विद शम्मी पठल नाम है जरा जरूर लै दिया करो ताकि उन्होंने पता चल जाता। तो बाकी है जरा साड़ी है जे जिन्हें भी साढ़े स्पोंसर है उन्होंने नाल एक सांझ हुई है, कुछ ना कुछ है जो जो तुम आम सर्विस देने हो वह तो कुछ ना कुछ है जो होर डिस्काउंट है जो जिन्हें भी साढ़े लिसनर्स परिवार पहुँचते हैं सानू सुन के उन्होंने जरूर दो। सो प्रो वन ट्रक रिपेयर एंड टायरस यही कहें जे तुम जो सर्जरी सवेर में सुन के उत्थे जाऊंगे तो जी एक कॉम्पलीमेंटरी PM इंस्पैक्शन होंगी है जी फ्री दी जाएगी, कॉम्पलीमेंटरी दी जाएगी। कोई तुम ट्रांसमिशन डैफ है जो रीबिल्ट कराना चाहते हो, कई बार बंक हीटर्स इंस्टॉल कराने स्पैशलाइज करते हैं कार हॉलरस के जेडे गड्डियां ढोंदे ने ट्रक ट्रेलर उन्होंने इन्हों की स्पैशलिटी है, बाकी होर ट्रक ट्रेलर भी काम करते पर उन्होंने बहुत घट योजना शॉप्स ने जिड़िया उन्होंने स्पैशल टी है जी रख दिया ने। सो उन्होंने एक नाम प्रो वन ट्रक रिपेयर एंड टायरस एन ध्रुव तारे वगू यह चमकदार नाम लगातार कंज्यूमर चॉइस अवार्ड जितते आ रहे हैं। सो तुम सरदार गुरप्रीत सिंह जी तो उन्होंने टीम के नाल संपर्क कर सकते हो 519-490 कार्ड 519-400-9061 या फिर 14 मैनसवुड कोर्ट मिल्टन विखे है जो इन्हों विजिट है जो वह कर सकते हो। बाकी दंदा की सामभ संभाल बहुत जरूरी है, जिन्ना मर्जी भज दौड़ लो, शरीर है ठीक है, हैल्थ इज वैल्थ, बड़ा सियाणियां ने नाप तोल के इन्हां शब्दां नूं साडी झोली दे विच पाया पर असी कई बार घौल कर लैने आ। सो दोस्तों दंदां दी मसूड़ियां दी संभाल है जिहड़ी जरूर रखो, नहीं तां फिर कहिंदे ना दंद गए स्वाद गया, उहदा जीव गए जीव जही हुंदा आ सियाणियां ने कहा। इस करके दंदा की संभाल जरूर रखो, प्रोफेसनल क्लीनिंग कराओ, तो कई जड़े यहोजे टिप्स ने जो थोड़े तो दंदा की मसूड़िया की लाइफ है जी बड़ी लंबी कर देंगे ने। सो तुम समाइल्स ऑन व्हील्स के बलबीर कौर जी होना दे नाल संपर्क कर सकते हो, सारी ही इंश्योरेंस कंपनिया के नाल यह काम करते हैं। कमाल की खासियत यही है तुहानू डेंटल कोल नहीं जाना पैंदा, समा डेंटल तुहाडे कोल तुहाडे दरां दे विच पहुंचदे ने। हाँ जी, सो बलबीर कौर जी होना को अपना मोबाइल ट्रक है, जे तुसी इन्हां दे ट्रक दे विच बैठ के कराने सर्विस लैनी है तो वह कर सकते हो, या फिर तुसी घर दे विच

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 905451200. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons ch baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne full privacy mil di hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600
2: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
3: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं
4: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
5: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
6: रेडियो आवाज रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200
7: पापा पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
8: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
9: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो
10: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज
11: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो शो रेडियो आवाज द वॉइस जिंदाबाद जिंदाबाद फॉर एडवर्टाइजिंग प्लीज कॉल 416-518-3200

0: and I am very super excited to perform at Mata Ki Chowki. On 4th September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. Aur main ye batana chahta hoon ki ye shaam म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी। हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है। सो गाइज, सी यू ऑन 4th September।
1: HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Mover।
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, रामचंद्र निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: Hi, this is Harpreet Singh from Top Choice.

आई रियली लव दिस सॉन्ग। पता नहीं इस गीत दे विच, इस म्यूजिक दे विच, गीत दे लफ्ज़ां दे विच, गीत दे लिरिक्स दे विच कैसी हेरा फेरी हो गई है लफ्ज़ां दी। दिल करदा बस सुनी जाइए सुनी जाइए सुनी जाइए।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: 98
3: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
5: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: 416-670-6609. That's 416-670-6609. Culture of Punjab.
1: मैं क्या किथे जा रही है?
2: दस वरी क्या पिछो हाक ना मारिया करो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी चली सी।
1: ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी हूँ 60,000 स्क्वायर फीट ते मूव हो गया।
3: 100 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन, हर तरह की ग्रोसरी ले पहुंचो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी 416-700-9100।
4: देखो जी, एक तो मच्छी होंगी है जिहड़ी पानी च रहिंदी, तो दूसरी मच्छी होंगी है जिन्हों वेख के मुंह च पानी आ जाता है। इंडियन स्वीट मास्टर तो मिल दिया, आज ही चेक लो।
3: कॉर्नर ऑफ मैकलॉकलन एंड रे लॉसन, कॉल 905-450-2800।
2: नाउ ओपन टिल 2 AM।
5: इंडियन फ्रूटलैंड, वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स।
6: ले, इको जगह तू किथे सारा कुछ मिलता। दो चीजा ले, एक जगह रुको, फिर अगलिया दो दी दूजी जगह रुको।
5: इंडियन फ्रूटलैंड है सच्ची, वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स। सब तो वधिया ग्रोसरी, सब तो वधिया प्राइसेस से आज ही पहुंचो। हुन इंडियन फ्रूटलैंड दी 7वीं लोकेशन भी खुल गई है, ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे, नियर होरांथ्रो स्ट्रीट, ब्रैम्पटन।
3: विजन वैनिटीज से न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्पेशल प्राइसेस। नहीं नहीं, वैनिटीज दी परचेज से सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज, डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 905-671-1800, 905-671-1800।
7: कंडीशंस अप्लाई।
2: हाय हाय, मैं मर जावा, आ की करी जाने हैं।
8: चल आजा आजा, तेरी उंगली भी वड देना।
2: क्यों?
8: मैं तो अपनी वड ली।
2: मेरी क्यों वडनी है, अपनी क्यों वडी?
8: वो ना एंटीसेप्टिक दी शीशी टूट गई सी, मैं क्या फजूल जाऊंगा।
9: फिट्टे मुंह तेरे।
10: आ पैणे, खरीद लिया गहने?
11: किथे, छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नी मिलिया चंगा सोना।
10: ले, ए वी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा है, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
11: गल ता तेरी सही है पैण, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन?
3: जनक ज्वेलर्स। जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच थानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स, कॉल 905-230-8800।
12: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave.

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूर तुहाडे लई पेश किया जाएगा। सुखी निजर अते किरण जी तुहाडे लई प्रोग्राम पेश करनगे। मनप्रीत जी हिंदुस्तान तों खबरां पेश करनगे। 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर ने 905-799-0999 905-799-0999। छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है। 6:26 सूरज आया, 8:16 दे चले जाना। मामा चंद सिंह अगे चल के 2:22 ते आएगा ते रात नूं 11:14 ते चले जाना। अज दा तापमान 28 डिग्री तक जाएगा। मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, हल्की जी बारिश पेगी। कल नूं 27 डिग्री सूरज चमकेगा। फ्राइडे नूं 28 डिग्री सूरज ते बदलवाई रहेगी। सैटरडे नूं 26 डिग्री चखड़ झोले थंडरस्टॉर्म मीं नेरी सब कुछ आएगा। संडे नूं सारा दिन छतरी छाता की लोड़ पेगी, बारिश पैंदी रहेगी, बदलवाई रहेगी। और सोमवार नूं जाके तापमान 25 डिग्री ते सूरज चमकेगा। जिहड़ा युद्ध चल रहा ईरान कोले अंदर खाते का जो है ही है, कहिंदे जी न्यूक्लियर बंब क्यों बना रहा। उधर खबरां आ रही ने टना दे टन जिहड़ा न्यूक्लियर मटीरियल है वह लभ्या सीरिया के अंदर। और अपना डोनाल्ड ट्रंप कह रहा जिहड़ा हरमोज है ये अमेरिका का हिस्सा है। उधर ईरान वाले कहिंदे एवें ना सुपने जे लई चल, उन्ना चेर असीं हरमोज नूं खोलना नहीं जिन्ना चेर यूएसए साडियां डिमांड नहीं मानता। एक रिपोर्ट के मुताबिक दसिया जा रहा पहले 6 महीनों च 579 कैनेडियन रेस्टोरेंट आ जिहड़े बंद होए ने, क्योंकि ग्रोसरी दीआं जिहड़ीआं प्राइज़ आ उपर आ ते जे तुसीं मेन्यू की प्राइस वधाउंदे हो उपर वह ठीक नहीं हुंदी, फिर गल नहीं बनदी हैगी, फिर गाहक आ उह नहीं आउंदे। वैसे छोले भटूरे कोई 299-399 ला रहे आ, इन्हां ने बंद ही होना रेस्टोरेंटां ने। एक छोले भटूरे की जिहड़ी प्लेट आ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ $5.45 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 299 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $8 ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
1: ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਲਓ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ, 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
0: ਔਰ ਅੱਜ ਹੋਗੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਹੋਗੀ 19। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਟ ਐਰੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ, $100 ਔਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਇਲ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਟਰੱਕ ਗਰੀਸ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਫੋਰਟ ਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲੂਪ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper tusi cheap flight tickets dipal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services dipal de vichu puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages vi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar
2: aaj khush to baat ho gaya
3: oh ta hona hi hai jadon tino video da no freezing no buffering wala 4k ultra high quality iptv box hove tain lagda banda hi hai
2: aaj mere paas bill hai property hai bank balance hai bangla hai gaadi
3: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ
4: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆਪਰ
3: ਓ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ
5: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ
3: ਪਰ ਢਿੱਲੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-1313 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਵੀਡੀਓ.com ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ
6: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
8: लिसन लाइव वचनों दो रेडियो विद सुखी निचर।

0: नागपाल साहब सरल आ गया। नागपाल साहब एक बार फिर तो जी आए सर। सत श्री अकाल। असि जिवें पहला सिमरन होना नाल तुहाडी टीम मैंबर ने उन्हां नाल गलबात करके हटे सी ते पुछ रहे सी कि किस तरीके दे नाल जिहड़े लोक लाहा लै सकदे आ ते लै रहे आ, एनरोलमेंट हो रही है, ते मेन वड्डी गल इह आ कि उहदे विच तुसीं इत्थे बैठे हो, तुसीं ट्रक चलाउंदे हो, अमेरिका जांदे हो, इंडिया भी गए हुए हो, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਾਸਿਸ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਓ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। एंड एक तीर दो निशान है, आप स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, लोन भी 50,000 से लेके 1,70,000 का आप लोग हासिल करते हैं। पीछे ना रहो, आपके आस पड़ोस वाले सब अप्लाई कर चुके हैं, उनके खाते में लोन आ चुके हैं, कहीं भी आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे ग्रोसरी करें, चाहे बैक होम भेजें, चाहे इन्वेस्ट करें, देयर इज नो कैच इन इट। बैंक आपको लोन देता है, यहाँ पे आपको स्किल फ्री में मिल रही है गवर्नमेंट से डायरेक्ट।
0: ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਟੈਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ,
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ काम, साफ तरीके से 8 साल से कर रहे हैं, और कागज भी असली लगते हैं इसमें, कोई नकली कागज भी नहीं बनता, और नकली कागज नहीं लगता तो कोई फीस भी नहीं है। फीस मतलब कमीशन झोल वाला काम है नहीं, साफ काम है, हम कोई और काम करते ही नहीं जिसमें झोल होता है, जिसमें कागज हिलते हैं। साफ काम, साफ तरीके से ले, फंडिंग 50,000 से 1,70,000 की हासिल करें, कोई इसमें क्या कहते हैं एज लिमिट नहीं है, और आप आसान से फुली ऑनलाइन कोर्सेज है, एग्जाम्स नहीं है, इजी असाइनमेंट्स है, फंडिंग आपके खाते में आती है। हमारी फीस कितनी है जी? $200 कब काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है।
0: अच्छा, तुसी 7-8 सालों तो इस फील्ड दे विच बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनरोलमेंट होके एक एक बार दो दो बार जिहड़े ये लै भी चुके हैं, सर्टिफिकेशन भी उन्होंने को आ गई है, ऑनलाइन क्लास चल भी रही ने, अलग अलग बैच भी चल रहे हैं, तो असाइनमेंट सिर्फ देनी है। तो तुसी दस रहे थे कि जो पेंशन भी बंदा लेंदा वो भी एलिजिबल हैगा?
1: बिल्कुल जी, चार्टर ऑफ राइट्स है इस देश में, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आप चाहे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अनएम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, स्किल हासिल करें, फंडिंग अपने अकाउंट में डायरेक्ट हासिल करें। आसान से सोखे जो कोर्सेज में हर 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है। आज आपको डबल लोन आ रहा है, 1,70,000 का फैमिली ऑफ 4-5 को लोन आता है। बच्चे अगर छोटे हैं तो कॉलेज की भी गवर्नमेंट वैसे ही कवर कर देती है, 1.5 लाख आया, आपने 1.5 लाख ही वापस करना है, 0% ब्याज है। 2.5 साल बाद रीपेमेंट स्टार्ट है, 2.5 साल बाद भी $1,00,000 पे ब्याज पूरे साल का सिर्फ $2,500 है। बताओ, $1,00,000 का ब्याज साल का $2,500 सिर्फ।
0: मैनू बंदा मिलया, ओ कहंदा भाई जी, ओ जदों कहंदा मैं 15-20 साल दी गल आ, कहंदा मैं ना जदों आया मैं एडवर्टाइजमेंट इदां सुनी ते कहंदा, ओ कहंदा भी लोन तुहानू बड़ी छेती लोन मिल जाणा, कहंदा मैं उहनां नूं कॉल कीती भी चलो पैसे दी जरूरत सी भाई दे दिओ, ओ कहंदे तुहाडे कोल घर हैगा, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਏਅਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜੇ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਏਅਰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਆਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਟਲੀਸਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਡਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਹ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ? ਜੀ
1: बिल्कुल जी, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, क्योंकि क्रेडिट चेक नहीं है, इसलिए ये नहीं कहते आपका क्रेडिट इतना होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट स्कोर 0 भी तो भी आप एलिजिबल है। गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, और पेमेंट भी 2.5 साल बाद स्टार्ट है, 15 साल में आप उसे पे करते हैं, शुरू में ब्याज 0% है, पैसे को कहीं भी लगा सकते हैं। मतलब 4-5 ऐसी कुंडी है इसमें जो आप मतलब कहीं नहीं मिलेगी, 0% पे लोन कहीं भी खर्च सकते हैं, 2.5 साल बाद पेमेंट स्टार्ट है, बताइए
0: एलिजिबल हो सकते हो। 437-264-3175 437-264-3175 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਮਸਮ ਸਿਰਫ $200 ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 437-264-3175 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही Call करो, 456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते.
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे. हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381.
5: ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਐਮੀ ਵੇਅਰ.
6: ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂੰ, ਆਓ ਜੱਟ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਦੇ.
5: ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮੀ ਵੇਅਰ ਲਾਈਵ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ. August at Great Canadian Casino Resort. Ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com. ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7.

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: जे किते एक्सीडेंट हो जावे तां परेशानी बहुत हुंदी है बट हुण फिकर करन दी कोई लोड़ नहीं कॉल करो बरार टैंबर पर्सनल इंजरी लॉयर्स जो के अपने क्लाइंट्स नू लखां डॉलरां तक दियां इंश्योरेंस कंपनीज तो सेटलमेंट्स दवा चुके ने बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन ते कोई चार्ज नहीं जदों तक थोड़ा केस नहीं जीतदे बरार टैंबर लॉयर्स 6478901437 6478901437 Number 1 personal injury lawyers the team
4: Tillon video 1980 ton Punjabi community de vich hazir hai Gore Road and Ebenezer te located ne IPTV ate Gurbani radio diyan services de layi paame tusi 4K IPTV super fast ultra high definition box lena ya thode kol box hega par tusi Tillon video de customer banna chahunde ho no buffering no freezing 4K service layi purana box kade vi upgrade update karwao tusi Tillon video nu call karo main product Tillon video da Gurbani radio India leke jaan ਤੇ ਬੈਸਟ ਗਿਫਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ 300 ਸ਼ਬਦ ਨੇ 110 to 220

0: All locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478 905-799-1478 रॉयल ऑटो सेंटर
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
3: S&S Lawyers को इन्ना सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लैण ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000